0: बीमा को लाभ दी आपको कमाई को लाभ लिने मौका आज बनो सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अभिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले रजियो
1: समानता र महिला अधिकारको लागि बुलन्दित आवाज रेडियो दिदी बहिनी 95.2 मेगाहर्ज

0: बीमा को लाभ दी आपको कमाई को लाभ लिने मौका आज बनो सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अभिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले रजियो
1: बैंजी खैमज बिले चौधरी एटीएम मोबाइल दे इंटरनेट बैंकिंग गोप्य विवरण आरी खाई बिले तो माध्यम क्यारे न्यो देप्रे छली जानकारी री विषय न्यो कॉल पर दिमो समय न्यो ठगदिल खामो बैंगर वे कर्मचारी बीरा न्यो देप्रे विवरण री विषय बैंक दे नील पर दिमो न्यो ताने सतर्क तना ठजर क्या बचेना सिद्धार्थ बैंगर क्याले जन हितरी जारी संदेश
0: सिद्धार्थ बैंक संबंध सदैव भरिलाई
2: रेडियो दिदी बहिनी 95.2 मेगाहर्ज हामी सबैको साझा आवाज

0: यो रेडियो दिदी बहिनी को समय सूचक हो।
1: अहिले मध्याह्न को ठीक 12 बज्यो।

0: Mania Extreme Energy Drink.
1: समी चो चौदह के में बोधे लोटी पर दी रो बैंक ने विवरण पी भी है मुई खाता लिखा है हमरो
2: खाई खाई बाहू कोई लोटरी बढ़ दिलवा
3: आंगे समी जो लोटी पर दी हूँ छानता ही गुदी
2: बढ़ दी आ बढ़ दी बल लोटरी खाली पर दी बा सहेली मैसेज व्हाट्सएप फेसबुक वाइबर खाने बने खाई विषय खाई मई विश्वास आनंद फोन खाले पनी आप ही विवरण खाई मई आपिन खबर बने वित्तीय संस्था कोई पासवर्ड पिन खाई मई आ रही सुमी बैंक आप ही बने आ रही
3: सिद्धार्थ बैंक क्यारे जन हितरी जारी संदेश
4: सिद्धार्थ बैंक संबंध सदैव भरिलाई
5: के तपाई प्रविधि मैत्री शिक्षा दिने विद्यालयको खोजीमा हुनुहुन्छ
6: कि आफ्ना बाबू नानीलाई अनुभवी तथा उत्कृष्ट व्यवस्थापन टिम भएको विद्यालयमा पढाउन चाहनुहुन्छ
5: यदि त्यसो हो भने तपाईको रोजाई पश्चिमाञ्चल माविने हुनुपर्छ जहाँ उत्कृष्ट र अनुभवी व्यवस्थापन टिमले प्रविधि मैत्री शिक्षा प्रदान गर्दै आएको छ
6: अध्यापन हुने विषयहरू
5: साइन्स कम्प्युटर साइन्स म्यानेजमेन्ट होटल म्यानेजमेन्ट ट्राभल एन्ड टुरिज्म सँगै ल र ह्युमनिटिज
6: विशेषताहरू
5: विषय विज्ञद्वारा अध्यापन गराइने
6: अत्याधुनिक प्रयोगशाला
5: प्रविधि मैत्री शिक्षा सिपमूलक शिक्षा दिने गण्डकी प्रदेशकै एकमात्र विद्यालय सम्पर्क पश्चिमाञ्चल मावि पोखरा चार गैरापाटन फिस्टेल हस्पिटल अगाडि फोन 061-577-444 543-333
7: रेडियो दिदी बहिनी 95.2 मेगा

0: अब रारा चाउचाउ ब्राउन चिकन, ब्राउन भेज र रारा चीज बल्स मा पनि उपलब्ध छ।
1: बैंकिंग खैमत बिले चौधरी एटीएम मोबाइल दे इंटरनेट बैंकिंग के गोपे विवरण आरी खाई बिले तुई माध्यम क्यारे न्यो दे प्रे छली जानकारी री विषय न्यो कॉल पर दिमो चमई न्यो ठगदिल खामो बैंगर वे कर्मचारी बीरा न्यो दे प्रे विवरण री विषय बैंक दे नील पर दिमो न्यो ताने सतर्क ताना ठगदिर क्या बचेना सिद्धार्थ बैंगर क्याले जन हितरी जारी संदेश
2: सिद्धार्थ बैंक संबंध सदै भरी लाई
3: निकट मा दिदी बहिनी, विकट मा दिदी बहिनी, यो हो रेडियो दिदी बहिनी।

0: बीमा को लाभ दी आत्म कमाई को लाभ लिने मौका आज बनो सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अधिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले जियौ।
1: इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट विशेषज्ञ डाक्टर राजन मणि भंडारी चरक मेमोरियल हॉस्पिटल नागढुंगा पोखरा में।
2: इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट विशेषज्ञ डाक्टर राजन मणि भंडारी आइतबार देखि शुक्रवार सम्म साझा 5 बजे पछि अथवा आवश्यकता अनुसार यस चरक मेमोरियल हॉस्पिटल नागढुंगा पोखरा में आउनु हुने भएकोले समयमै आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षण गरी स्वास्थ्य लाभ गर्नुहोला।
1: उपचार सेवाहरू
2: भेरिकोस भेनको लेजर उपचार खुट्टाका सुन्निएका तथा फुलेका नसा लेजर प्रविधि बिना ठूलो चिरफार उपचार करने विधि
1: अल्ट्रासाउंड तथा सिटी गाइडेड बायोप्सी प्रक्रिया मासु को टिश्यू नमूना लिएर रोग जस्ते ट्यूमर पता लगाउने प्रक्रिया
2: रक्त नली संबंधी रोग उपचार एंजियोप्लास्टी स्टन्ट राख्ने प्रक्रिया इम्बोलाइजेशन
1: कैंसर उपचार ट्यूमर एब्लेशन तथा विशेष थेरापी सानो चिरफार मिनिमल इन्वेसिव विधि ट्यूमर नष्ट करने उपचार
2: शरीर में जमा भएको पस वा असामान्य तरल पदार्थ निकाल्ने प्रक्रिया
1: पाठीघरको मासु युटेरिन फाइब्राइड एम्बोलाइजेशन पाठीघरमा भएका फाइब्राइड मासुका गाँठालाई शल्यक्रिया नगरी उपचार गर्ने विधि आदि
2: थप जानकारीका लागि चरक मेमोरियल हस्पिटल नागढुङ्गा पोखरा फोन 061-582-7-78-582-7-79-582-7-80
3: समानता र महिला अधिकारको लागि बुलन्दित आवाज रेडियो दिदी बहिनी 95.2 मेगाहर्ज

0: अब रारा चाउचाउ ब्राउन चिकन, ब्राउन भेज र रारा चीज बल्स मा पनि उपलब्ध छ।
1: बैंजी खैमज बिली क्योंकि एटीएम मोबाइल दे इंटरनेट बैंकिंग गोप्य विवरण आरी खाई बिले तो माध्यम क्यारे न्यो देप्रे छली जानकारी री विषय न्यो कॉल पर जिमो समय न्यो ठगदिल खामो बैंगर वे कर्मचारी बीरा न्यो देप्रे विवरण री विषय बैंक दे नील पर जिमो न्यो ताने सतर्क तना ठद्र क्या बचेना सिद्धार्थ बैंगर क्याले जनहितरी जारी संदेश
2: सिद्धार्थ बैंक संबंध सदैव भरिलाई
3: निकट मा दिदी बहिनी, निकट मा दिदी बहिनी, यो रेडियो दिदी बहिनी 95 थोप्लो

0: अब रारा चाउचाउ ब्राउन चिकन, ब्राउन भेज र रारा चीज बल्समा पनि उपलब्ध छ।
1: सामाजिक सञ्जालजी छानले जाँझीमरी बुझीमरी ब्याङ्गैन आधिकारिक प्रोफाइल मात्र फलोलना खैबै बिनी लिङ्क खुल्दिउ भन्दा उइसु सु खन क्या खलो सुजित बिमिलो खन यामु बिमारी छानले खोना दे खुल्दिब वेबसाइट ना यूआरएल चेक लना आक्षेपा घटना तल आफै लागि समय समयरी आफै न पासपोर्ट फेरदिल परिमो नुई तोय तारी शङ्ख लैदी भिसा बैङ्गरी यही मरी तुरन्त खबर लना
2: सतर्क तन ठगे तबत क्या जोगिना
3: सिद्धार्थ बैङ्गर क्याले जनहितरी जारी सन्देश
4: सिद्धार्थ बैङ्क सम्बन्ध सधैँ भरिलाई।

0: रेडियो रेडियो दीदी बहिनी को समय सूचक हो।
1: अहिले बिहानको ठीक पाँच बज्यो।